पहला है अक्षर के मतलब है दिल लागल दिल लागल दिल लागल, दूसरा का मतलब इश्क हुआ, तीसरा का मतलब

पिएंगे नाचेंगे खाएंगे डिस्को के धुन पर अपने प्यारी के साथ खूब नाच भी करेंगे।

0: ये देश का समाचार था। आप सुनिए, नाचिए और मनोरंजन उठाइए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
1: De disco-versie van een Chutney Boom, deze Elado remix by Disco Disco op een Maxi Baba Edits volume 1. Ah, Donna Summer. Disco, disco, disco.